0: ये बताइए कि शादी के बाद क्या आपने कभी किसी और औरत की तरफ नजर उठा के देखा?
1: सभी औरत की तरफ नजर उठा के देखता हूँ, लेकिन अच्छी नहीं।
0: बिल्कुल अच्छी नहीं। जो अखबारों में अफवाहें होती हैं उसका क्या कहेंगे आप?
1: सच है, कुछ नहीं मिलेगा।
0: सही भी है।
1: I think, most, what you call, the name of married bachelor.
0: श्रीदेवी वाली कहानियां सभी सच्ची हैं।